चाले पाउण दी आग्या बख्शिश करो, सुख होवे नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरी पहाणी सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: जा तू मेरे वल है ता क्या मुशंदा, खुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। लखमी टोटना आवई खै खर्च रहंदा, लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा। ए वैरी मित्र सब की त्यान मंगे मंदा, लेखा कोई न पुछई जा हर बख्शंदा। आनंद पाया सुख पाया मिल गुर गोविंदा, सबे का सवारिया जां तुद पावंदा। सबे का सवारिया जां तुद पावंदा, सो कहो टल गुर सेवियै सहज सुपाई। दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए, दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। सतनाम